मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और

0: श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं स्वदेश गान के साथ, जिसे आप सुनेंगे रविन्द्र दीक्षित के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे रविन्द्र दीक्षित के स्वर में ये स्वदेश महिमा। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना मोहम्मद रफी के स्वर में। लीजिए अब सुनिए एक और भक्ति रचना मोहम्मद रफी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे शबाब मीनाई की गीत रचना मोहम्मद रफी के स्वर में। कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने सुनी रब की इबादत, शबाब मीनाई की रचना के रूप में मोहम्मद रफी के स्वर में। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी कार्यक्रम विवरण के उपरांत सुबह 6:35 पर किसान श्रोता सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। विषय होगा केंचुआ वर्मी खाद का उत्पादन। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:40 पर। गायक होंगे छिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। चिंतन का प्रसारण करेंगे सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर सुनिए हिंदी महक श्रृंखला में वार्ता स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य। वार्ताकार होंगे मनोज मिश्रा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 7:30 पर, शाम 5:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसमें सुनिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से राग देसी तोड़ी में ख्याल गायन। जितेंद्र चौरसिया कलाकार होंगे लोकरंग कार्यक्रम में। समय होगा सुबह 9:00। ढोलक पर होंगे अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर जब्बार खान। सुबह 9:30 पर आनंद लीजिए फिल्मी कव्वालियों का। सुबह 10:05 पर हम प्रसारित करेंगे गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। गैर फिल्मी भजन आप सुनेंगे सुबह 10:20 पर। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आपके साथ होंगे सुबह 10:30 पर। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए होगा युववाणी कार्यक्रम। इसमें सुनेंगे वार्ता रक्तदान का महत्व। वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी। इसके अलावा मिलेगी रोजगार सूचना। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 6:00 हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर समय नियत होगा लोकधारा कार्यक्रम के लिए। कलाकार होंगी चांदनी रैगवार। ढोलक पर होंगे अशोक विश्वकर्मा, बैंजो पर साथ देंगे जब्बार खान। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसमें श्रोता सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा बाल लीला का आनंद और प्रवचनकर्ता होंगे सतीश कुमार पांडे। इसके अलावा सुनिए वार्ता मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। वार्ताकार होंगे उमेश पटले। इसके अलावा दी जाएगी आज की नसीहत। रात्रि 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। रात 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे स्पॉटलाइट। रात 10:00 आप सुनेंगे नाटक, शीर्षक होगा पत्थर दिल। रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रविशंकर से सितार पर बजाया राग कामेश्वरी और गंगेश्वरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 11:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। दोपहर 12:00 होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30

पर सुनिए संग्रहालय से। दिन में 1 बजे होगा बहनों के लिए महिला सभा कार्यक्रम, जिसमें बहनें सुनेंगी काव्य पाठ इंदु प्रभा खरे से। इसके अलावा जानेंगी उपयोगी जानकारी के क्रम में गर्मियों में बालों की देखभाल के बारे में। दिन में 1:30 पर श्रोता सुनेंगे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। इसमें सुनेंगे देशभक्तिपूर्ण बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम और कलाकार होंगे अन्नू रेगवार और साथी बद्री प्रसाद खरे निरंकार साथी और पंचम सिंह खेंगर। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। दिन में 1:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें सुनिए रविन्द्र दीक्षित के गाये भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। दोपहर 2 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत।

0: कर 45 मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें सुनिए रविन्द्र दीक्षित के गाए भजन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। दोपहर 2 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत का और 2:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। किसान श्रोताओं के लिए अब प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम। विषय है केंचुआ वर्मी खाद का उत्पादन।
1: पंच भैया रो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं उन पंचन के लाने जो उनके खास तौर से जैविक खेती में केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग करो चाहू था। तो भैया हम अपन को बता दें कि ई के लाने अपन का करने हैं कि अगर अपन सोच रहे कि हमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने तो उकी योजना पहले से अपन का बना लेने हैं। जो केंचुआ ई के लाने सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं उनको नाम है भैया आइसिनिया फोर्टिडा या यूडिलस यूजनी। ये दो प्रजातियां हैं जो इनके बर्मी कंपोस्ट खाद बनावे के लाने बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है भैया। अब एक ही कछु तकनीक बात से हम अपन से बताएं कि अपन का जैसे मान लो स्थान को चयन करने तो अपन कैसे करें। पहला देख ले भैया कि जो वर्षा यानी पानी है, जब पानी बरसे तो वह ऊ जांगा पे इकट्ठो न हो तो ऐसे स्थान को अपन का चुनाव करने। ऊके आस पास पानी हो वो जरूरी है ताकि अपन जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें तत्काल नमी पहुंचा सकें, उन्हें गीलो कर सकें और हमेशा होते कि अपन निगरानी कर सकें। कैसे कि जो अपने केंचुआ होत ना तो उनके दुश्मन सोई भैया बहुत होत। अपन ने देखो हुए कि चाहे अपने मछली पकड़े वाले भैया हों, चाहे सांप हैं, मेढक है, छिपकुली है, चिड़िया है, दीमक है, लाल चीटी है, जे भैया केंचुआ का बहुत जल्दी क्षति पहुंचा देते हैं। तो जिन नुकसान न पहुंचा पाए ईके लाने भी अपन का अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था करने हैं। फिर अपन का क्या करने, अपन का जो है 50 से लेकर 75 टन प्रतिवर्ष बर्मी कंपोस्ट खाद को अगर उत्पादन करने तो अपन का 12x20 फुट आकार को पक्को प्लेटफार्म बनाने हैं। ऊके ऊपर 12x25 फीट आकार को शेड सोई भी छाया जी का अपन बोलत वो सोई बनवाने पर है जिसे की अपने छायरो बनो रहे और बरसात को पानी उस शेड के अंदर न जावे। यानी जो अपने छायरो बनाओ उते पानी बरसात को ना जाओ चाहिए। जो अपना प्लेटफार्म अपन ने तैयार करो तो उके चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार बना के दीवार के ऊपर से शेड की ऊंचाई तक मुर्गा जाली अपन जरूर लगा देने जिसे कहा हुए कि केंचुआ के जो दुश्मन हैं उन दुश्मन से अपन अपने केंचुअन का बचा सकते हैं। इमें भी है जो अपना प्लेटफार्म बनो उमे 3x18 के 3 बड़े 4 इंची मोटी बालू जी अपन बजरी कात ऊपर से 1-2 इंच मोटी परत घास फूस की लगा दो चाहिए। ई के बाद 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची तह बना के अपन गोबर की तह बना देने फिर मिट्टी डाल देने जिसे के जो अपने केंचुआ हैं वे आसानी से खाके और फिर अपने जो है केंचुआ खाद को निर्माण कर सकें। अपन भैया इमें जैसे जो भी जानवर अपने घर है अपन किसान पंच है तो उनको गोबर चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो है ना घोड़ा की लीद है मुर्गी फार्म को कचरा है वो अपन ने जन बनाओ ऊ गड्ढा में अपन मिला सकते हैं। फसलन की जन तना है पत्तियां हैं खरपतवारन के अवशेष हैं सड़ी गली बगीचा की पत्तियां हैं गन्ना की खोई है वह भी अपन इमें डाल सकते हैं। लकड़ी को बुरादा छाल सूती फटे पुराने कपड़ा कागज केरा के पत्ता रसोई घर को कूड़ा और बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जो सलेरी है वो भी भैया अपन इमें उपयोग कर सकते हैं। इमें आप खासतौर से अपन विशेष ध्यान देने हैं वो भी है अपने जो बेड बनाओ है अपन ने उमें हमेशा 35-40% तक नमी जरूर बना रखने हैं और जो इनके शत्रु हैं सांप मेढक छिपकुली वे जो है उनसे अपन केंचुआ का बचाए रखने हैं। और ई खाद को उपयोग अपन खासतौर से दलहनी है तलहनी है खाद्यान है मसाले वाली फसलें हैं इन सब में अपन आसानी से इनको प्रयोग करें और उत्पादन निश्चित है कि अपन को बढ़े और अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज और खाद्यान्न अपन का प्राप्त हुए।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी किसान श्रोताओं ने जाना केचुआ वर्मी खाद का उत्पादन विषय के बारे में। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान का संगीतमय पाठ। गायक थे छिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: दुनिया जिसका अनुकरण करती है, जिन्हें अपना आदर्श मानती है, जिन्हें सिर माथे पर बिठाकर रखती थी, जिनके मंगल आगमन पर पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार करती थी, ऐसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, रामचंद्र, कृष्ण, गांधी सब त्याग के हिमालय हैं, मुक्ति के साधक हैं। ये ऐसी अलौकिक विभूतियां हैं जिनका भोगों में कोई विश्वास नहीं था, जो त्याग के हिमायती थे, साधना के पक्षधर थे, निरे भोगों में उनका भरोसा नहीं था। यद्यपि उनके इर्द गिर्द बेशुमार भोग सामग्री थी, विलासता के संसाधन थे, लेकिन वे सदा अलिप्त रहे हैं। कीचड़ में कीड़े की भांति आपात कंठ मग्न होने के बजाय कीचड़ में कमल की तरह जिए, लेकिन आज हमने भोगों का रास्ता पकड़ लिया है। हर मनुष्य के मन में भोगों के लिए बेतहाशा दौड़ लगी है, होड़ लगी है। एक आधुनिक ग्रेजुएट युवक ने एक सन्यासी से पूछा, कहा, आपकी ये उम्र, उभरता यौवन, और कहां ये कठोर साधना, कहां ये खाने पीने खेलने कूदने के दिन, और कहां ये सन्यास, कहां ये मौज मस्ती की उम्र, कहां ये त्याग तपस्या का पथ। आपको क्या सनक चढ़ी थी कि आप रंगीली दुनिया को देखे बिना, भोगे बिना सन्यासी बन गए? क्या ये पागलपन नहीं है? सन्यासी ने उत्तर में एक कहानी सुनाई कि एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था। वो मिट्टी ढोने का काम करता था। कुम्हार का प्रतिदिन का काम था प्रातःकाल उठना, जंगल जाना, वहां से मिट्टी लाना और खड़े बनाना। प्रतिदिन की तरह वो जंगल जा रहा था कि रास्ते में चमकता हुआ एक गोल पत्थर दिखाई दिया। उसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही थी। कुम्हार ने देखा कि वो गोल पत्थर बहुत अच्छा है, चमक रहा है, किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। उसने उसको उठा लिया और गधे के गले में बांध दिया। वो अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक जौहरी मिला। उसने कहा, क्यों कुम्हार भैया, कहां जा रहे हो? कुम्हार ने कहा, घर जा रहा हूं। जौहरी ने चमकीले पत्थर को देखकर पूछा, इस गधे के गले में पत्थर क्यों बांध रखा है? कुम्हार ने कहा, रास्ते में पड़ा मिला था, अच्छा लगा सो गधे के गले में बांध दिया। जौहरी ने कहा, ऐसा करो, तुम इसे बेच दो। कुम्हार ने कहा, ठीक है, ले लो। जौहरी ने पूछा, कितने में दोगे? कुम्हार ने कहा, एक रुपए में दूंगा। जौहरी आखिर जौहरी था। उसने कहा, ये क्या, एक रुपए की चीज है? ये तो बाजार में 25 पैसे में मिल जाती है। किंतु कुम्हार अपनी बात पर अडिग रहा। जौहरी ने कहा, कौन खरीदेगा तुम्हारे इस पत्थर को? और वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर दूसरा जौहरी मिला। उसने भी यही प्रश्न किया कि इस पत्थर को गधे के गले में क्यों बांधे हो? कुम्हार ने फिर वही उत्तर दिया, अच्छा लगा सो बांध दिया। जौहरी ने कहा, इसे बेच दो। कुम्हार ने कहा, ठीक है, एक रुपए में ले लो। जौहरी ने तुरंत 1 रुपए दिया और वो चमकीला पत्थर खरीद लिया। पहले बारे जौहरी ने जब यह सब देखा तो वो दौड़ कर आया और कुम्हार को डांटते हुए बोला, ये तो लाखों की चीज थी, तूने 1 रुपए में दी। ये हीरा था, मूर्ख, तू लुट गया, पिट गया। कुम्हार ने कहा, पागल मैं कि तू? जब तुझे मालूम था कि यह बहुमूल्य हीरा है, लाखों की चीज है, तो तूने इसे क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं खरीद लिया, इसकी कदर क्यों नहीं जानी? तुम्हारी तो किस्मत फूट गई है। तब सन्यासी ने युवक से पूछा कि पागल नहीं हूं, जिस शरीर में विराट परमात्मा को पाया जा सकता है, तुमने उसे क्षुद्र भोगों में लगा दिया। जिस जीवन को तीर्थ बनाकर जीना था, तुमने उसे तमाशा बना डाला।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य ज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है।

0: कहूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केन्द्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो। आधी शताब्दी बीत गई है पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर

0: हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रूपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
3: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन त्रिगे धान तो धन ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोध ही नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आकर मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूं मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्रीबेस्ड फॉरेस्ट एग्रीबेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। 4-5 चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर

में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी महक। हिंदी महक श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य। तो आइए सुने ये वार्ता। वार्ताकार हैं मनोज मिश्रा।
1: तपती धरती, बढ़ती गर्मी और गड़बड़ाता पर्यावरण संतुलन हमें लगातार संभलने के संकेत दे रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र का गड़बड़ाना व प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण संरक्षण को चेतावनी दे रही हैं कि हमें वर्तमान समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ सुरक्षित भविष्य को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य करना आवश्यक है। और ये सब सिर्फ साल में एक दो बार पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रमों के आयोजनों से नहीं होगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर साल के प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पर्यावरण को सहेज कर संभव कर पाएंगे, वो भी पर्यावरण को अपनी दिनचर्या में शामिल करके, उसके लिए अनुकूल प्रयास करके। और इसके लिए अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी आदतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। जैसे घर में जहां आवश्यकता न हो वहां बल्ब या पंखे चलते हुए न छोड़ें, पानी को व्यर्थ न बहाकर प्राइवेट परिवहन की जगह पब्लिक परिवहन का इस्तेमाल करके, घर से निकलने वाले कचरे का अच्छे से प्रबंधन करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन और भूजल स्तर को बढ़ाकर तथा पेड़ पौधे लगाकर, ऐसे अनेक तरीके हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखकर सुरक्षित व बेहतर भविष्य निर्माण के लिए। लेकिन आज हम अपनी इस वार्ता के माध्यम से कुछ और प्रयासों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा, जिसे स्वच्छ ऊर्जा के नाम से भी हम सभी जानते हैं, ये ऊर्जा उन प्राकृतिक और नवीकरणीय अर्थात पुनः प्राप्त करने योग्य स्रोतों से उत्पन्न होती है जो वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। और क्लीन एनर्जी से आशय पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उसके संसाधनों के उपयोग से है। प्रकृति के साथ असली तालमेल ही असली विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण और विस्तार में झलकती है। इस गठबंधन के द्वारा पर्यावरण के हित में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का दृष्टिकोण दुनिया को दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा को निर्बाध रूप से साझा करने के लिए इस दूरदर्शी अवधारणा को पेश किया। भारत की यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य सुरक्षित भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही COP21 में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का भी संकल्प है। दोस्तों, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख पहल है। इस प्रयास के लिए विशेष

रूप से 2030 तक लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत की जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी रोका जा सके। दोस्तों, प्रौद्योगिकी में नवाचार और प्रगति को प्रोत्साहित करती इलेक्ट्रिक वाहन नीति स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। अब आप सोच रहे होंगे, पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण का क्या? तो मित्रों, उसके लिए BS4 और BS6 मानकों का उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल और सख्त उत्सर्जन मानक हैं, जिससे हवा में 70-75% तक कम प्रदूषण फैलता है। साथियों, ग्रीन टेक या हरित प्रौद्योगिकी के बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा। इस पहल का भी मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जो नवाचार के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है। अगर व्यवहारिक तरीके से बात की जाए तो हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऐसी तकनीकें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं जो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण LED बल्ब, हरित कौशल, ऊर्जा कुशल उपकरण हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है, तथा पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वच्छ पर्यावरण के साथ सुरक्षित भविष्य की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रयास, जिसका नाम है मिशन लाइफ, भारत ने COP26 में दुनिया को मिशन लाइफ से परिचित करवाया, जो कि व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को प्रेरित करके पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करता है। ये मिशन की अवधारणा है कि प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर दिया गया। मिशन लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट की थीम्स हैं ऊर्जा बचाना, पानी बचाना, एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को ना कहना, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम अर्थात सतत जीवन शैली अपनाना, कूड़ा कम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ई वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कम करना। दोस्तों, साइकिल का उपयोग, पैदल चाल, ट्रेडमिल की बजाय बाहर दौड़ना, फ्रिज को नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करना, AC का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखना, पानी को ठंडा रखने के लिए सामुदायिक मिट्टी के घड़े स्थापित करना इसमें शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर सेविंग मोड में रखना ऊर्जा को बचाने के अन्य प्रयासों में भी शामिल है। पानी बचत की आदत भी स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही कम पानी वाली फसलें जैसे मोटे अनाज, मिलेट्स की खेती अपनाना, जल स्रोतों, निकायों का गहरीकरण व पुनर्भरण, फसल विविधीकरण, घर, स्कूल और कार्यालयों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करना, वाटर मीटर, जल शुद्धिकरण सिस्टम जैसे अनेक उपाय पानी को बचाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक खेती और मौसमी शाक सब्जियां व फल प्रकृति व इंसान दोनों की सेहत के लिए आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना हमारी पुरातन परंपरा है। ये स्वच्छ वातावरण के लिए इसलिए भी आवश्यक हैं, क्योंकि ये उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखते हैं तथा बाहरी कीटनाशक और रसायनों से मुक्त रहते हैं तथा अपने आसपास की सस्ती व आसान उपलब्धता इसका विशिष्ट गुण है। साथ ही इसमें पर्यावरण के शुद्धिकरण की अधिक क्षमता होती है। एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलें भी इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र को भी सुदृढ़ करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश प्रदूषण यानी कृत्रिम रोशनी का तेजी से बढ़ना प्रकृति में प्राकृतिक चक्र को बाधा पहुंचा रहा है। इंसानों, कीटों, जानवरों और पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का नकारात्मक असर हो रहा है। दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण नकारात्मक कारक है जो स्वच्छ भविष्य की राह में बाधा बन रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक। जी हाँ, कांच के विकल्प के रूप में दुनिया के सामने आया सिंगल यूज प्लास्टिक इंसानों के काम तो आसान बना रहा है, पर प्रकृति की सेहत बहुत तीव्र गति से बिगाड़ रहा है। इससे जलवायु का परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, जल व मिट्टी में आग घुलनशील होने के कारण ज्यों का त्यों कई सालों तक वैसा ही रहता है। दोस्तों, एक दूसरी बात ये भी है कि किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को देखकर या छूकर ये बता पाना कि ये कब डिकम्पोज होगा आसान नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 16 जुलाई 2022 से देश भर में लगभग 19 प्रकार के चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिए गए हैं। साथ ही इसके निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। भारत की ये नीति, नवाचार और सार्वजनिक कार्यवाही और जागरूकता की वजह से प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर बढ़ता एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि जब होगी प्लास्टिक से दूरी तभी तो होगी प्रकृति से दोस्ती।
और दोस्तों दो और मुख्य बातें, अगर हम 3R अर्थात रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सभी बातें सिर्फ सुनना बस नहीं है, अपने जीवन में

0: उतारकर उपयोग करना तथा आदतों में तब्दील करके धरती के अस्तित्व की रक्षा करनी है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण के साथ सुरक्षित भविष्य तभी हो सकता है जब हम उपर्युक्त बातों को व्यवहार परिवर्तन और लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता हिंदी महक श्रृंखला के अंतर्गत, जिसका शीर्षक था स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य। वार्ताकार थे मनोज मिश्रा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म दादा से। गीत के बोल लिखे थे गौहर कानपुरी ने, संगीत उषा खन्ना का था। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और पंकज उधास को फिल्म गुनाहों का फैसला में। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सवारा है संगीतकार बप्पी लहरी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे अनजान की गीत रचना लता मंगेशकर और पंकज उधास के युगल स्वर में। बप्पी लहरी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था फिल्म गुनाहों का फैसला के लिए।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए इंदिवर की गीत रचना बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। आवाजें आप सुनेंगे बप्पी लहरी और आशा भोसले की। फिल्म है घर घर की कहानी।

अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और आशा भोसले के युगल स्वर में इंदीवर की गीत रचना। फिल्म थी घर घर की कहानी और संगीत बप्पी लहरी का। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पोडवाल के स्वर में फारूक कैसर की गीत रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है फिल्म इंसाफ के लिए।

0: फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और हेमलता के स्वर में फिल्म नसीहत का ये गीत, जिसे लिखा है अनजान ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: धन हो तेरे मेरे प्यार की।
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली।
2: कैसी कुंडली? काय की कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली। मिल गई रे, मिल गई।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नसीहत से। आवाजें थी किशोर कुमार और हेमलता की। अनजान के लिखे गीत को संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, प्रतीक्षा कीजिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात के लिए।

समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज़ डमरू मध्य के फिर से खुले

0: को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया।

0: मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रूपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Gold

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से राग देसी तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से राग देसी तोड़ी में ख्याल गायन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और इस समय आप सुनते हैं लोक संस्कृति का विविध रंगी कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं जितेंद्र चौरसिया, ढोलक पर साथ दे रहे हैं अशोक विश्वकर्मा, बेंजो पर जब्बार खान। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये स्वच्छता गीत।

0: स्वच्छता विषय पर केंद्रित ये लोक रचना आपने सुनी। गायक कलाकार थे जितेंद्र चौरसिया।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मदर की माता।
0: लीजिए अब सुनिए।

0: एकाधार प्रभु की भक्ति की ओर प्रेरित करती ये चेतावनी आप सुन रहे थे जितेंद्र चौरसिया के स्वर में।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लीजिए अब सुनिए नशा निषेध विषय पर केंद्रित ये लोक रचना जितेंद्र चौरसिया के स्वर में।

नशा निषेध पर ये सुझाव के रूप में लोक रचना आप सुन रहे थे जितेंद्र चौरसिया के स्वर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये विवाह गीत। गायक कलाकार हैं जितेंद्र चौरसिया।

अभी आप सुन रहे थे ये विवाह गीत जितेंद्र चौरसिया से। लीजिए अब इन्हीं से सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में केवट संवाद।

भक्त और भगवान की ये लोक रचना के रूप में आप सुन रहे थे जितेंद्र चौरसिया से। आज इस कार्यक्रम में ढोलक पर थे अशोक विश्वकर्मा, बेंजो पर साथ दे रहे थे जब्बार खान। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी कव्वालियां।

अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी की रचना फिल्म बहू बेगम से। इस कव्वाली को गाया था मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों ने। लीजिए अब सुनते हैं फकीरा फिल्म की ये कव्वाली। आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, अजीज नाजा और भूषण मेहता की। गीतकार हैं रविंद्र जैन, संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी कव्वालियां। कार्यक्रम के अगले क्रम में आपको सुनवाते हैं ताजमहल फिल्म से ये कव्वाली। आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है। साहिल लुधियानवी की रचना है और इसे संगीत से सवारा है रोशन ने।

लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं दो ठग, इस फिल्म की ये कव्वाली। आवाजें हैं आशा भोसले, उषा तिमोती और साथियों की। इस कव्वाली को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं धोती लोटा और चौपाटी इस फिल्म की ये कव्वाली। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, प्रीति सागर और साथियों की। शायर हैं हसरत जयपुरी और संगीत श्याम जी घनश्याम जी का।
1: आईना भी तेरा उन पे।

0: कुछ है पता सबकी खबर रखते हैं समझे।
1: चल गई
2: मोहम्मद रफी, प्रीति सागर और साथियों की गाई इस कव्वाली के साथ ही कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है प्रतीक्षा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी की।

0: लीजिए, सुनिए। सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य

0: योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैणन निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रूपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नौनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: सिंगरौली जिले की चिट्ठी आलेखता अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के। ये आकाशवाणी भोपाल का
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी 8वीं कड़ी। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं महेश शर्मा।

गांधी चर्चा में बापूजी की आत्मकथा से आज का प्रसंग है सभ्य पोशाक में। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में

अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलेंस के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे, केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूं। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव ऐसा मानना होगा कि वहां मैं बेहोश की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता, मैंने तो प्रश्न वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए और उन्होंने चढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं इसमें मांस है या नहीं। अगर तुम्हें अब भी यही बात करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी अच्छे होटल में भोजन गृह में खा लो, बाहर ही मेरी राह देखना। और मैं दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कोई कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ता गया। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का एक रास्ता पकड़ा। बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शीलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो ब्रॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाई से मैंने दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, पर इतनी टीम टाम ही काफी न थी। अकेले सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना

0: जानना चाहिए। उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए, कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे, पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1, 2, 3 चलता, उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा, वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा, उन्हें जिस दाम भी वह बिके बेच डालने की इजाजत दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्हें पसंद आई। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने तक चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, अब मैं विद्यार्थी बना।
1: बापूजी ने कहा था,
2: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन 5 यमों का पालन करना प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक है। मुमुक्षु तो सभी को होना चाहिए, इसलिए मनुष्य का चरित्र 5 यमों की भित्ति पर बनाया जाना चाहिए। इनका आचरण समस्त संसारी जीवों को करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। व्यापारी हो तो भी मनुष्य न तो असत्य बोले और न असत्य का आचरण करे। गृहस्थ हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। आजीवन अहिंसा का पालन किया जा सकता है। चोरी न करना और धन अथवा वस्तुओं का परिग्रह न करना लोक व्यवहार चलाते हुए कठिन है, फिर भी आदर्श को ध्यान में रखकर एक सीमा बनानी चाहिए, और जब वैराग्य उत्पन्न हो तो महात्याग भी किया जा सकता है।
1: और आइए अब सुनते हैं बापू का एक प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। आज आपने सुनी इसकी 8वीं कड़ी। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे महेश शर्मा। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी भजन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफी के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ इस भजन के साथ।

कार्यक्रम के अंत में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं इबादत के रूप में मोहम्मद रफी के स्वर में।

मोहम्मद रफी के गाए इसी भजन के साथ ही गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और समय हो चला है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को उर्मिला यादव का सप्रेम नमस्कार।

श्रोता, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म पतंग से। सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता गौण, कर्ण, शक्ति, दर्शन, रिया और जया। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारवी, प्रणव सावले। और ये ईमेल हमें मिला था पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक का। नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया से मेहरबान सिंह नागल, संतोष कुमार, प्रताप सिंह, शिवम कुमार नागल, अभिषेक कुमार नागल और इनके माता पिता। ग्राम पाठर कवड़ा से अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री और धनश्री बुराड़े। आलोड जिला रतलाम से ये ईमेल आया था जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़ का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती और ओम कुमार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये मेल भेजा था सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हिरामण शेंडे ने। विलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, प्रिंस राकेश। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत, अर्जुन गवाड़कर और टुकटुक। बहादुरा से नागपुर से विशाल, शैलेश गवाड़कर, सुमित, ध्वनि और परी गवाड़कर। और कार्यक्रम की अगली पसंद आप सभी के लिए इस गीत से, जिसे हमने चुना है फिल्म बेताब से।

श्रोता, इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से ईमेल के रूप में। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस, कनिका पटेल की। सिमगा छत्तीसगढ़ से हैं रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, कोमल यादव। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुगू सिक्का। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, बघेल और समस्त परिवार।

सेक्टर 67 टीडी से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज ने ये ईमेल भेजा है। इंदरजीत कौर छावड़ा, स्वीटी रविंद्र सिंह छावड़ा, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से राम पंजाब, रामटेके यशोधरा, रामटेके श्राव्या, रामटेके। गिरिडीह झारखंड से इसी गीत की फरमाइश ईमेल के साथ भेजते हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, छिप्रा मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। मुल्लामपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद बजाज के नाम के साथ। बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल।

से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, मुल्लामपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद बजाज के नाम के साथ, बुलठाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली, श्लोक कुमार, बुलठाणा इस्लाम महाराष्ट्र से ये ईमेल भेजा है सहदेव दामोदर, शशिकांता दामोदर और सुमित कुमार ने। आप सभी की फरमाइश इस गीत की।

श्रोताओं, इसी गीत के लिए ये फरमाइश मिली है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा की मजनू का टिल्ला से और सतमा एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। ये पत्र भेजा है इसी गीत के लिए बालचंद कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, बोले कुशवाहा, भगवती कुशवाहा और कुमारी आकृति ने हनुमत कुशवाहा के नाम के साथ चिमनी पहाड़ गांव थाना ईशानगर जिला

राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी का यवतमाल से, गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक और अली मुजफ्फर अली। इसी क्रम में ये पत्र भेजा है। गांव अलगी डांड, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, श्रीमती फुलजी और समस्त परिवार ने। रामजीवन राजपूत, राममिलन भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और समस्त राजपूत परिवार का ये पत्र आया है ग्राम मृतला, जिला महोबा से। ये हैं अशोक चुंबले, दिनेश चुंबले, रूपेश चुंबले, लीलाबाई चुंबले, चैताली चुंबले, प्रीति चांदने, नामखेड़, जिला वाशिम से। अपनी फरमाइश के साथ ये पत्र भेजते हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, शिवाजी चौक, छत्तीसगढ़ से। उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर का ये खत मिला है पालचुआ, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। ये ईमेल आया है संजय मार्कंडे, ममता मार्कंडे और किट्टू का, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव ये ईमेल भेजते हैं डाबकी रोड, अकोला से। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम की अगली फरमाइश के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण की और संगीत नदीम श्रवण का। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से। ये ईमेल आया है

ईमेल आया है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, दुबिहार नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से, गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर प्रियम थांदी का ये मेल है। टोरेवल नवाशा।

कोल सिटी बरगा काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निक्की साहनी और मोहम्मद अफसल मलिक, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, घनौरी तेलीवाला से अपने ईमेल के साथ।

अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। बुल्हाना महाराष्ट्र से हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी के नाम के साथ। ग्राम गौना कुसमाड़, थाना सौजना, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, रामदेवी, ब्रजेश, अखिलेश, लखनलाल चाहना, आकाश, रानीपरी और समस्त परिजन।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हिना से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती बिलसराया से। ये हैं दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी कुशवाहा और ये पत्र भेजा है इन्होंने नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से। राजेश चौहान, संदीप, किशोर, सचिन, बनोसा, दरियापुर, जिला अमरावती से। मेराज अंसारी, वसीम अंसारी, मोहम्मद फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी, जुबेर अंसारी मुरादाबाद से। ग्राम भड़भूंजी, जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, रीना, सुषमा, दुर्गा, परी, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश। जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, दौलतबाग मुरादाबाद से। राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, ग्राम लोहारी, जिला खंडवा से। खुर्दी रोड, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद।

गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुफ्ता और अंजुम ईमेल के लिए ये फरमाइश भेजी है ज्योति मक्कर मन्नत मक्कर और इनकी परी।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ। आवाज मुकेश की, शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता बंधु। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैराव, ज्योतिरानी, गुरमीत कौर और मनु। ये हैं मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सबीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री और मुनीरा मोहम्मद इकबाल खत्री के नाम के साथ। महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से साइना बी खत्री, रानी खत्री और बेनू खत्री ने ये मेल भेजा है। इस्लामपुरा सनावत मध्य प्रदेश से। इसी क्रम में ये पसंद हमें मिली है ईमेल के रूप में। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी की ये फरमाइश भेजी है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।

0: जी हाँ श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो मित्र उर्मिला यादव को। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र सुबह के 11 बजने को है। प्रतीक्षा कीजिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की।
1: हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम है आपकी फरमाइशों का और आप हमें फोन करके अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फोन नंबर है 07552660902। इसमें 0755 हमारा एसटीडी कोड है, तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते मैडम
2: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
3: मैं अनिला भी मंथुरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, कैसी हैं आप?
3: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
3: बस पड़े पड़े समझा रही थी मैडम आप।
2: अरे वाह,
3: कर रही थी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम है आपकी पसंद का, कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
3: ये फूल दो माली का सुनवा दीजिए, पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई घर नहीं।
2: तो आपका गीत हमें मिल गया है कार्यक्रम में फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू मैडम।
2: तो लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
4: ये

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपली वराई तहसील बेगौन जिला रहा है।
0: कैसे हैं आप
1: जी मैडम जी? अच्छे हैं, खाना खा लो।
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: जी मैडम, वो सुना दो। बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात ही फिल्म को है जहाँ तक मैडम जी, सही पता तो नहीं आ रहा हुआ, खबर नहीं आ रही फिल्म का।
0: जी जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में
1: जी
0: आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जयशंकर कुशवाहा, छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब।
0: हाँ, थोड़ा समय लग जाता है, सारे श्रोता जो है कोशिश कर रहे होते हैं, तो थोड़ा।
1: फिल्म का नाम है
0: जी।
1: हेलो।
0: हाँ बताएं।
1: डोली सजना साथ निभाना।
0: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी दीदी, जी दीदी,
0: बिल्कुल आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद रफी आशा भोसले जी की आवाज में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते दीदी।
0: कार्यक्रम में शामिल

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें जीत सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: फिलहाल मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से?
1: वैसे मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा
1: जी, जी, जी।
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं?
1: हाँ फिलहाल इंदौर में हूँ मैं, यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ आप काम करते हैं?
1: जी जी।
0: ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज लेकर आया हूँ मैं।
0: हाँ बताए।
1: उनका नाम रहेगा आई मिलन की रात।
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कथा। वैसे सावन का महीना तो भी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का महीना आया है।
1: हाँ जी आया है कथा से।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, तो बस आपको सुनवाई देते हैं गीत। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
1: जी थैंक यू।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम, प्यार से नमस्कार।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है
1: जी? मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।
0: शारदा प्रसाद प्रजापति जी मथुरा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद है, माँ की बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं।

0: हैं, रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और जब आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल में फोन लगता है तो फिर कहना क्या, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। दीदी, मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
1: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
0: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ। और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ।
1: अच्छा।
0: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत आप सुंदर करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए। और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हेलो, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
0: क्या करते हैं मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
0: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज? फिर
1: ये सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
0: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज आ रही है? जी शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा, रक्षा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानी पे बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान है, हर चीज की दुकान है, जितना सामान मिलता है किराना स्टोर का सब सामान मिलता
0: है। अच्छा,
1: मिलेगा
0: किराने का सामान रखते हैं, ठीक है। फूलचंद जी, तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल रक्षा जी, अभी जो है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बादल बहुत छाए हुए हैं, काले बादल हैं, तो ऐसे में बार बार मन करता है कि ऐसे ही एक गीत सुन लूं।
0: जी
1: फिल्म का नाम है गजब और गीत की बोल है कि ए हवा ए घटा तुझे क्या है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
0: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल, दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा, और पूनम जी है कानपुर से।

0: जी
1: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ एमपी धार से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं, क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह अरे वाह।
1: मेरी किनसे बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी?
0: जी
1: अच्छा, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है।
0: जी
1: तो आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ इसका बरखा बहार देखिए, अगर मुझे जाता है तो नहीं, फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार।
1: बरसे फुहार, सॉरी। हाँ
0: जी
1: हाँ ये वाला है।
0: जी जी ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है।

0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्नति पंचोलिया ने इसी गीत को सुनना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर है रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोता, उस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर है विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर, सरला मनबर, विशाल तथा चेतन मनबर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश में अगला और अंतिम गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय अंतराल का।

0: शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग।

0: पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधू को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजयश्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्त प्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान।

0: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजय श्रवा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
1: जी सम्राट।
0: तो फिर विलंब क्यों?
1: सम्राट, इस सभा में हूं अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई होने की आवश्यकता है।
0: पत्र को पढ़ा जाए।
1: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूं अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करे और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का आधा भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
0: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं। मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्य और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय श्रवा की क्या राय है।
1: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
0: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहस पूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता, भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
2: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
2: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेयस्कर

हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे और सम्राट व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान कुछ सहस्त्र सुंदरियां

0: चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः है चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान, कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा, जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
1: मात्र शुभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अप्रयास ही पूर्ण हो गई हों, और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी, जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं, के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का? कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं। अमात्य, हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण अभिमत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
2: ठहरिए सम्राट।
1: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
2: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या, यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है,
3: कन्या है, है।
2: इसी राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।

0: भुवन मोहनी।
1: सम्राट, आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभदेव का सिर समर्पित है।
0: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभदेव का शिरच्छेद कर दिया?
1: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करे। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को न रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी नारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलास पूर्ति का साधन बनेंगी? इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सतीत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझे। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंहनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने? सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी।

0: कि या तो वे समरभूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रिया उनके तुच्छ शरीर से विलप्त की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्थ बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी।
1: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतज्ञ हैं। उठो
0: सम्राट।
1: महामात्य ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हुणदूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
0: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
1: भुवन मोहिनी ठीक कह रही हैं युवराज। हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही हुणदूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों, चलो।
3: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
1: अवश्य साम्राज्ञी।
3: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहिनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहिनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी, यही हमारा शुभाशीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय श्रवा, राजकुमार हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज ये आपकी महानता है, यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार्ग को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
0: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
1: ये धुनिया कैसी है?
0: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो।

0: अरे भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है सेनापति? बोलो,
1: हम है सेनापति। क्या हो गया अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
0: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध करो। बोलो, मंजूर है?
1: मंजूर है।
0: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
1: चलो, यही सही। सैनिकों, रुक जाओ।
2: युवराज, युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
1: महाराज आदित्य सेन हूण सेनापति अब हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है।
2: द्वंद्व युद्ध?
1: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल, आ जा हूण सेनापति। यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
0: आ जाओ, चलो, आओ आओ आओ आओ आओ आओ।
3: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने ये क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
4: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
3: परंतु महाराज, हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
4: देखते जाओ सैनिक।
1: अच्छा, अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं?
3: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे, उन्होंने उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
1: अब बस, ये मेरा अंतिम प्रहार होगा। ले, संभाल इसे।
3: हूण सेनापति मारा गया। हूण सेनापति मारा गया।
5: टूट पड़ो हूण सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
6: बचाओ, बचाओ, हम शरणागत हैं। हमारे प्राण बख्शो।
1: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो। इनके अस्त्र शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
6: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते। वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यही भारत में व्यतीत करना चाहते। हमें स्थायी रूप से यही बसने की आज्ञा दीजिए।
1: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श हैं।
6: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है।

0: आओ पुत्र विजय श्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। हा, अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजय श्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट, राजकुमार विजय श्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट, आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजय शर्मा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती सम्राट।
0: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज, अब इसमें विलम्ब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ है ही, अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एल

एलपीजी आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान होगा।

जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सवाल लेकर मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इतिहास गवाह है कि जिसके इरादों में मजबूती रही उसने हमेशा जीत हासिल की। चाहे वह जीत सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनात्मक हो या धार्मिक ही क्यों ना हो, ऐसा ही जीत हासिल करने और शहादत का एक पर्व है मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम उल हराम में मनाया जाता है। बहनों, ये महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। बहनों, इस महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने 680 ईस्वी में कर्बला के मैदान में यजीद की सेना के खिलाफ सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कर्बला की घटना इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी मिसाल है जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को दर्शाती है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। इस दिन लोग काले वस्त्र पहनते हैं जो शोक का प्रतीक है, और कई स्थानों पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया कर्बला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। ये जुलूस शांति और एकता के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग मातम करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहनों, मुहर्रम पर्व केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है बल्कि उन लोगों

को आत्ममंथन और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिद्धांतों और सत्य के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। बहनों, कर्बला की घटना आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये पर्व हमें एकजुटता, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। तो चलिए हम भी इस पर्व को मनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

बहनों, अभी हम सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खैर की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत से नवाजा था AR रहमान ने। बहनों, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वो कविता का रूप ले लेता है।

मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, हर युग में इस भूमंडल पर क्या जीती हूँ क्या हारी हूँ। मेरा जीवन शीतल छाया, मेरा जीवन शीतल छाया, ममता बनकर सब पर छाया, पर कलयुग की आंधी में क्यों मेरा जीवन ही मुरझाया। इसकी रक्षा की खातिर किसने सब कुछ अपना बार दिया, किसने इसको सम्मान दिया, किसने इसका है त्याग किया। युग युगों से नारी जो संघर्ष और अपमान झेलती आ रही है उसके लिए मैं लिखती हूँ। शतयुग में सती हुई नारी, शतयुग में सती हुई नारी, त्रेता में सीता वन हारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, जब युगों युगों तक उसको ये अपमान सहना पड़े, तब उसने कलयुग में क्या स्वीकार किया उसको भी देखिएगा। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया। और जब उम्र थी खेल खिलौनों की, और जब उम्र थी खेल खिलौनों की, तब बाल विवाह के फेरों ने बचपन भी जिसका छीन लिया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन जिसका रंगहीन किया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन भी जिसका रंगहीन किया। जब और नहीं कुछ शेष बचा, जब और नहीं कुछ शेष बचा, तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर सती प्रथा का नाम दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर सती प्रथा का नाम दिया, सती प्रथा का नाम दिया। मेरी इन पंक्तियों में नारी पीड़ा की कहानी समाप्त होती है, और नारी शक्ति के जागृत होते ही मैं क्या लिखती हूँ सुनिएगा। लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया। कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, पहचान गई जो स्वयं को जब शक्ति का फिर आवाहन किया। इसलिए अब कहती हूँ, इसलिए अब कहती हूँ, नारी को अबला मत कहना, शक्ति का सागर है नारी, फूल भी है शूल भी है, दबी हुई है चिंगारी, छेड़ोगे खाक करेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह। श्रोताओं, अब तक आपने संघर्ष का स्वर सुना, अब प्रस्तुत है स्मृतियों और ब्रह की भावनाओं से ओतप्रोत मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। मैं अपनी द्वितीय रचना के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ। वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है। सुनिए मेरी ये रचना। तुम ही

बहनों, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ। कवयित्री थी इंदु प्रभा खरे। बहनों, आज की भागम भाग में हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम रात में देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं और कभी कभी तो यूं ही पूरी रात कट जाती है और नींद हमारी आंखों से दूर भाग जाती है। जी हाँ, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अत्यधिक काम का बोझ और डिजिटल दुनिया के प्रभाव के कारण कई लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं। ये समस्या आम हो चुकी है। ये केवल मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहनों, तनाव और चिंता, व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षिक तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और देर रात तक टीवी की

नीली रोशनी हमारे स्कैंडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बाधित करती है। मैनो आज की अनियमित जीवन शैली नींद की कमी का एक मुख्य कारण है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मैनो नींद की कमी से लगातार थकान और ऊर्जा की कमी होती है, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, ध्यान केंद्रित ना करना और मेमोरी लॉस, सिरदर्द, आंखों में भारीपन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यदि नींद की कमी को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो कई सारी गंभीर बीमारियां हमें अपने गिरफ्त में ले सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का बढ़ जाना, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होना, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आती है, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वाहन चलाते समय। नींद की कमी से बचने के लिए सोने और जागने का समय आपको निर्धारित करना ही होगा। डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सीमित करना होगा। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से आपको दूरी बनानी होगी। सोने के लिए अंधेरे और शांत वातावरण में रहना होगा। कमरे का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा। योग और मेडिटेशन, ये 2 ऐसे रामबाण हैं जिसका उपयोग करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं की तो हम यूं ही पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, कुछ इस तरह से।

मैनू अभी हम सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया था आरडी वर्मन ने। मैनू आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में हमारी स्किन तो रूखी हो ही जाती है, हमारे बाल भी तेज धूप के कारण और पसीने के कारण झड़ने लगते हैं और हमारे बालों को भारी नुकसान भी गर्मी के मौसम में होता है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सल्फेट मुक्त और हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी को भिगोकर और एलोवेरा जेल को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर दोनों को अगर आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलेगी और बालों का रूखापन भी कम होगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बाहर निकलते समय सिर को स्कार्फ या टोपी से ढकना बहुत जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में जो पेय पदार्थ है, नारियल पानी है, गन्ने का

0: जूस है, पानी है और इसके अलावा खीरा है। इन सब चीजों को हमें अपनी डाइट में शामिल भी करना होगा। नियमित रूप से हमें ट्रिमिंग करवाना चाहिए। बालों के दो मुहे सिरों को कटाने से बाल कम उलझते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए और बालों की यूवी सुरक्षा के लिए स्प्रे या सीरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा ठंडे या सामान्य पानी का ही इस्तेमाल करें। ज्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं, क्योंकि बालों की जड़ें गर्म पानी के संपर्क में आते ही कमजोर हो जाती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, मछली, दालें और हरी सब्जियों को भी हमें शामिल करना होगा। बाल धोने से पहले तेल से मालिश करें और पुदीना या एलोवेरा जैसे ठंडक देने वाले बालों के मास्क को आप लगा सकते हैं। ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें। बालों की सुरक्षा करें और खूबसूरत दिखें, क्योंकि अच्छे घने लंबे काले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैंने आपसे बात करते करते मुझे समय का तो पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। लेकिन चलते चलते दो पंक्तियां आपके साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु रैक्वार और साथियों की आवाज में।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज में। अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर की।

और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।
1: माधव मोहन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

0: गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही है। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री

0: अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री

0: जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को

0: सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूं कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथ ही में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से, और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो अब उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैक।

पर और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत, किशोर कुमार की आवाज, और गाने के बोल हैं छू कर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए, अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में सुना अभी आपने ये गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के और म्यूजिक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र।

हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफी की आवाज में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से गजबीय परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

नीरज श्रीधर की आवाज में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहां से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर के बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता, वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ, आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8 बजे, रात 8 बजे। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9

बजकर 30 मिनट पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में न्यूज हेडलाइंस कुछ पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे।

0: वक्त इस घंटे की खास खबरें।
1: मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और यह समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और अवैध तस्करी को रोकना है। साथियों, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे अनेक बीमारियां और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है। ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में

प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वस्थ के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था। वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाए तो संतोष और खुशी मिलती है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है, शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि यह मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी

0: और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं ले देते बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्त दान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच, रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल, फूल, लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। आवेदन करने की

प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोतो लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं सबसे पहले एक मैं और एक तू से ये गीत बैनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाज में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में जब सुनिए मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म प्लेयर्स से ये गीत। शब्द रचना आशीष पंडित की है, धुन तैयार की है प्रीतम ने।

कार्यक्रम में जब सुनिए फिल्म 40-84 से ये गीत नीरज श्रीधर और अमिताभ नारायण की आवाज में। शब्द रचना हसन जहांगीर की है, संगीत दिया है ललित पंडित ने।

फिल्म गली गली चोर हैं से ये गीत मोहित चौहान और अनमोल मलिक की आवाज में। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म बोल बच्चन से ये गीत, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म बोल बच्चन के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बता देते हैं आज की सभा के शेष

और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1315। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज की हमारी कलाकार होंगी चांदनी रैकवार। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे अशोक विश्वकर्मा और बैंजो पर होंगे जब्बार खान। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाइया सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथ ही होगा मानस प्रवचन, प्रसंग होगा बाल लीला का आनंद और प्रवचनकर्ता होंगे सतीश कुमार पांडे। और होगी एक वार्ता मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, वार्ताकार होंगे उमेश पटले। और आज की सीख का विषय होगा जी की बात में फर्क, ओ के बाप में फर्क। रात 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक पत्थर दिल। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग कामेश्वरी और गंगेश्वरी। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में। कल प्रातः 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली काव्य पाठ रामलाल द्विवेदी से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर सुनिएगा गीत गुंजन कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम, जिसमें कल के हमारे कलाकार होंगे रामचरण पटेल। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर होंगे जब्बार खान और चीका पर होंगे बाबू रैकवार। 9:30 पर आप सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे। 10:05 पर आप सुनेंगे सबरंग के अंतर्गत मिश्रित संगीत। 10:30 पर सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल की हमारी सांधिकालीन सभा में युवा साथी सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा, और यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों में जरूरी टीकाकरण, प्रायोजक होंगे डॉ RS त्रिपाठी। शाम 6:30 पर सुनिएगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे राम प्रसाद कुशवाहा। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर होंगे जब्बार खान और चीका पर होंगे बाबू रैकवार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई कल सुनेंगे चर्चा, साथ ही होगा श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हैलो लोकरंजन, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। और आज की सीख का विषय होगा जड़ों में मठा भरत। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। और रात 10 बजे आकाशवाणी केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर, और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रैली करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर आरंभ किया है। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आज बेलकास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है।

0: और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र

0: उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you? Happy birthday, Stephen!
5: Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yeah. Hey. Come. John, please come here.
3: Oh, sure. Yeah.
5: Join us for a drink, please.
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
6: <स्थिक्ष्ण>

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल।

0: 지웅아.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक।

0: है, यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने।
1: जी
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
5: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
6: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
7: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के

0: बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम
7: सही। वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
7: और
3: अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कई
6: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
3: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
6: हाँ। पर सर्दी में ठंड।

0: लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
2: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है,
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके
1: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे
1: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
1: सूरज ये
2: कहलाता है।
1: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे कर पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना, मौसी
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
0: वो भी दस पूछेंगे,
1: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
0: मौसी
1: डर जाती
0: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे, वो 10 से एकदम 70
3: नहीं 80 हो जाएंगे,
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
6: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर, और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारी कलाकार हैं चांदनी रैकवार, इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं अशोक शर्मा, और बैंजो पर हैं जब्बार खान। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं ये लेद चांदनी रैकवार से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम जब सुनिए वर्षा ऋतु पर ये गीत चांदनी रैकवार से। इनके साथ ढोलों पर संगत करी है अशोक विश्वकर्मा ने और बैंजो पर हैं जब्बार खान।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गारी चांदनी रखवार से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक और गारी चांदनी रेखवार से। इनके साथ ढोलक पर संगत की है अशोक विश्वकर्मा ने और बैंजो पर हैं जब्बार खान।

0: पहले तो आएगी ना।
1: So girls, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुनरीलोकितों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये लेद चांदनी रैकवार से।

का हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार थी चांदनी रैखवार, इनके साथ ढोलक पर संगत करी थी अशोक विश्वकर्मा ने और बैंजो पर थे जब्बार खान। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

yer dikar, Pokhran dikar. Miss World dikhi, World Cup dikar. Chandrayaan dikar, Insat dikar. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है।

पीडब्ल्यू पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथी होगा मानस प्रवचन, प्रसंग होगा बाल लीला का आनंद, प्रवचनकर्ता होंगे सतीश कुमार पांडे। साथी होगी वार्ता मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, वार्ताकार होंगे उमेश पटले। और आज की सीख का विषय होगा जी की बात में फर्क, ओ के बाप में फर्क। रात 8:15 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिर से फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 9:30 पर। 10:00 आप सुनेंगे नाटक पत्थर दिल। 10:30 पर सुनिएगा पंडित रविशंकर से सितार पर बजाया राग कामेश्वरी और गंगेश्वरी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको दे देते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना। ये गुमशुदा संबंधी सूचना है रुचिका यादव की पुत्री हैं विनीत यादव की। निवासी हैं मोहाल नलकूप विभाग के सामने बघौरा उरई से। होलिया कुछ इस प्रकार है, गोरा रंग है, लंबा चेहरा है, बाल लंबे हैं, कद 5 फुट का है, उम्र करीब 20 वर्ष बताई गई है, आग नाक कान औसत है। पहनावा सूट पहने हुए घर से 1 जून 2026 को 11 बजे से लापता हैं। जिन किसी को भी इनके बारे में जानकारी मिलती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। कृपया पेन और कॉपी उठाकर जल्दी से इनका नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर है 8368110054 यानी 8368110054। दूसरा नंबर है 9054500697 यानी 9054500697। इनका एक और नंबर है 9451606982 यानी 9451606982। ये जो नंबर बताए हैं यह है रुचिका यादव की। पिता का नाम है विनीत यादव, ये बघौरा उरई की रहने वाली हैं। उम्र करीब 20 वर्ष बताई गई है और ये 1 जून 2026 से रात के लगभग 11 बजे से अपने घर से गायब मिली हैं। तो नंबर मैंने आपको बताई दिए हैं, जिन किसी भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी लगता है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। तो जल्दी से आपने पेन कॉपी तो उठा ही लिया था, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8368110054। दूसरा नंबर है 9054500697। तीसरा नंबर है 9451606982। दूसरी गुमशुदा संबंधी सूचना है निक्की की। पुत्री है बेटेलाल प्रजापति की। निवासी हैं ग्राम पोस्ट मदारीपुरा थाना कोठौद जिला तहसील जालौन की रहने वाली हैं। उम्र करीब 19 वर्ष बताई गई है। रंग सांवला है, चेहरा पतला है, लंबाई करीब 5 फीट है, सलवार सूट व लोअर टी शर्ट पहने हुई हैं। यह करीब 19 मई 2026 को दोपहर 3 बजे से घर से बिना बताए सहेली के घर पर जाने का बोल के गई थीं, फिर वापस नहीं आई हैं। जिन किसी भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। नंबर है 9454401428 यानी 9454401428। दूसरा नंबर है 9454403600 यानी 9454403600। तीसरा नंबर है 8869060634 88

6906-0634। गुमशुदा संबंधी सूचना अब यहीं पर समाप्त होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा

0: समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
2: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर

आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: आज की ग्राम सभा कार्यक्रम में स्वीकार करो अपने छोटन भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। और भैया आज अपने जो न मुस्लिम धर्म के पंच भैया हैं वे सब जने आज मुहर्रम को त्योहार मना रहे हैं। अब जोन जो मुहर्रम को त्योहार है जो भैया एक गम या दुख के रूप में मनाओ जाते हैं। आज के दिना यानी आज से लगभग 680 ईसा पूर्व करबला के मैदान में पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नवासे हते इमाम हुसैन उनकी शहादत के गम में और अन्याय के खिलाफ उनने जो कुर्बानी दई थी ई के उनकी याद में जो भैया अपन मुहर्रम को त्योहार मनाऊ थे। अपने जो मुस्लिम धर्म के भैया बहन हैं वे आज के दिन अपन देख रहे हो कि विभिन्न शहरन में अपने भैया छतरपुर में भी ताजिया निकाले जा रहे हैं और जुलूस निकाले जाते हैं, है ना। कैसे ई त्योहार को एक गम या दुख के रूप में अपने मुस्लिम संप्रदाय के भैया बहन मनाऊ थे। अच्छा ई को भैया जोन त्योहार है जो उनने अन्याय के खिलाफ उनने जोन भैया संघर्ष करो या उनने जोन अपने प्राण निछावर करे उके उपलक्ष में ताजिया के रूप में भैया उन्हें याद करो जाते हैं और उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं और जुलूस निकालो जाते हैं। तो ई प्रकार से आज अपन सब जने मिलके मुहर्रम को त्योहार मना रहे हैं और आगे हम अपन से बतकाव करें ई के पहले थोड़ा सा रुकत हैं।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और भैया देखो त्योहार कोनो भी होए

में कोनो न कोनो सीख जरूर दिए थे। वजह है के आपसी प्रेम भाईचारा। अब जोन त्योहार है ई त्योहार में अपन ने देखो है कि अपने जोन सब भैया बहन हैं वे भी सब जने मिलजुल के एक संगे सहयोग करत हैं और त्योहार मनात हैं। कासे अपने त्योहारन को देश भी जोई है और अपने भारत में इतने धर्म के लोग भैया रहत हैं और अपन ने देखो ये कि सब धर्म के पंच भैया चाहे कोनो भी धर्म को त्योहार काय ना होए सब जने एक दूसरे को सहयोग करत हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये इसे भैया कहो भी गाव है के जो हमारा देश है अनेक होत भय भी एक है, यानी भारत में विभिन्न व्यक्ति होत भय भी विभिन्न प्रकार की संस्कृति होत भय भी हम सब जने एक संगे मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो जा तो भाई भैया बतकाओ अपने त्योहार की और अब अपन आगे बतकाओ करें तो इस समय अपन देख रहे हो कि अपने जो पंच भैया हैं उनके खेतन में भैया जुताई हो रही है या कछु पंच भैया जुताई कर भी चुके हैं, है ना। कैसे के देखो जिते पानी बरस गौ है तो ते तो पंच भैया ने बुआई को काम भी शुरू कर दो है, लेकिन अपने जो भैया छतरपुर जिला है या छतरपुर जिला के आसपास है इते पंच भैया ने जुताई तो कर दी है लेकिन अबे भैया इते पानी को इंतजार है। तो अपने जो पंच भैया हैं वे जुताई करें लेकिन गहरी जुताई करें। अब उसे फायदा का हुई है, उसे फायदा जो हुई है कि भैया जो नीचे की मिट्टी है वह ऊपर आ जाते हैं, है ना। उसे उमे जो होते कि जो जमीन के अंदर हानिकारक कीट हैं या उनके भैया अंडा हैं या लार्वा है वे फपूंद के रूप फपूंद उनकी बाहर आके और धूप में भैया सूख के नष्ट हो जाते हैं। तो पहलो फायदा तो अपन को जो है। दूसरा फायदा जो है कि कई प्रकार के ऐसे जिद्दी खरपतवार रात हैं जिनको यदि अपन ने गहरी जुताई करी तो उसे जे खरपतवार जमीन के अंदर दब जाते हैं और सड़कें नष्ट हो जाते हैं। और तीसरो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यदि अपने पंच भैया गहरी जुताई कर रहे हैं तो जो अपनी मिट्टी है वह हो जात भुरभुरी, कैसे ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाते हैं और भुरभुरी होवे से जो होते है कि जब बरसात को पानी बरसत है भैया तो मिट्टी में पानी जो न कहने लगा सोखने की क्षमता है वह ज्यादा अधिक हो जाते हैं, है ना। अब जब मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक रहे है और मिट्टी में नमी रहे है तो अपनी पैदावार भी अधिक हुई है और अपन को लाभ भी हुई है। तो हमारा तो सब पंच भैया से जो ही कहो है कि अपने पंच भैया गर्मियन में अपनी गहरी जुताई जरूर करें, है ना। वैसे तो पंच भैया करते हैं, कैसे देखो भैया अपन और हैं शुरू से खेती किसानी करत आ रहे तो ऐसी बात तो नहीं है कि अपन नहीं कराता है, लेकिन गहरी जुताई करें कैसे कछु का है पंच भैया सुनत तो है लेकिन भी करत नहीं है। तो गर्मियन में गहरी जुताई अपन जरूर करें, इसे अपन को इस प्रकार के फायदा हुई है। और भैया आज है का आज है शुक्रवार और शुक्रवार को पंच भैया इंतजार करते हैं मानस प्रवचन को। तो आज हम अपने पंच भैया को मानस प्रवचन में सुनवा रहे हैं। प्रसंग है बाल लीला का आनंद और प्रवचन करता है सतीश कुमार पांडे। तो मानस प्रवचन को आनंद अपन लो और अपने सब पंच भैया ले में।

आज का प्रसंग भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। प्रिय श्रोता बंधुओं, आइए आज हम भगवान की उन बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण करने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप में आकर की है।

प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पहुड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गईं जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाई हुई नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पाले में सोया था, यहां किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो कहा, बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा वहीं पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।

अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और पदार्थ भी देखे जो कभी सुनने भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देख कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से जुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु भी राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे।

भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाओं की ओर अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।

तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं।

तो भैया अबे अपने पंच भैया सुन रहे थे मानस प्रवचन प्रसंग हतो बाल लीला का आनंद और प्रवचन करता हते सतीश कुमार पांडे जू। और भैया अब अपन बतकाव करें आज की चर्चा में फिर थे के वर्षा जल को संरक्षण। तो भैया अपन देख रहे हो के अब पानी जोन है वो भैया बरसवे वालों है ना, कैसे के मानसून ई बार थोड़ी सी लेट हो गए है लेकिन कई जगह मानसून आ गए है और जिते पानी बरस वो प्रारंभ हो गए है या अपने इते अवे शुरू होने हैं तो अपन ई को संरक्षण जरूर करें। अब कहो काय कैसे इसे के अपन ने देखो है कि भैया पानी बरसत है और भैया नालियन के माध्यम से भैया बहके निकल जाते है ना। तो अपन यदि इको संरक्षण करें जैसे अपने आसपास भैया अपन ने देखो है कि तला है या बावड़ी है ना, तो अपन उते उन्हें देख लेवे के उनकी पहले नंबर तो भैया साफ सफाई कर लेवे, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरे नंबर पे जो देख लेवे भैया के कहूं से भैया टूट फूट तो नहीं है, कैसे अपन ने देखो है कि गांव में जो कुआ है या तालाब है ना, तो ऐसो तो नहीं कि भैया पतो चलो पानी बरसो और उनको जो भैया पानी है वो कहूं ना कहूं से टूटो या दरार होवे के कारण भैया निकल गो। तो अपन इन चीजन को देख ले में। दूसरी भैया महत्वपूर्ण बात जा है कि अपने सबके घर में भैया नलकूप है ना, और छतन पे भैया पानी जो है वो तो नाली के माध्यम

0: माध्यम से आउ और निकल जाते, बह के बेकार हो जाते, ऊ को अपन कछु नहीं कर पाओ। तो अपन भैया जोन पानी है एक पाइप के माध्यम से अपने नलकूप के बगल में भैया गड्ढा खोद के, है ना, उमे जैसे भैया बालू है, मिट्टी है, और भैया रेता है, कोयला है, जो सब अपन डार के और पाइप को भैया ऊ गड्ढा में कर देवे। तो उसे जो है के जो बरसात को पानी है वो अपनो जमीन के अंदर जे है, उमें अपन को फायदा जो हुई है के जोन अपन को गर्मियन में भैया समस्या आन लगत ना, के पतो चलो भैया नलकूप सूख गओ या कुआ में पानी कम रहो, है ना, या बोले भैया झेर बंद हो गई, तो इसे इस समस्या को अपन हल कर सकते हैं और जमीन को जल स्तर भी बढ़े, है ना। तो हमारा तो सब पंच भैया से जो ही कह वो है कि भैया बरसात को जोन पानी है ई को अपन संरक्षण करें, ई को बचाएं, है ना। कैसे कहू भी गौ है कि जल है तो कल है, और आगे हम अपन से बतकाव करें ई के पहले थोड़ा सो रुकत है।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और भैया अब अपने पास एक वार्ता है, जानकारी है उन पंच भैयन के लाने जोन पंच भैया ई मौसम में मूंगफली की फसल बोन चाह रहे हैं, तो उनके लाने एक अपने पास वार्ता है कि मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी, और अपन को जानकारी दे रहे हैं उमेश पटले। तो अपन सुनते हैं भैया जा जानकारी के मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी का है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, सभी को हमारा राम राम। आज हम बात करेंगे मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। जैसे कि हम जानते हैं मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसके लिए लंबे और गर्म मौसम की जरूरत पड़ती है। मूंगफली उत्पादक राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान का मुख्य स्थान है। वर्तमान में मूंगफली से विभिन्न प्रकार के खाद्य परिष्कृत पदार्थ बनाए जाते हैं जिनका बाजार में बहुत मांग है। यह दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है जिनमें नत्रजन एकत्रित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, अतः इसकी खेती करने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तथा इसकी खली जानवरों को खिलाने एवं जैविक खाद के रूप में भी उपयोग की जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैसा बीज लेना चाहिए एवं बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। जब हम बीज का चयन करते हैं तो फलियों को बुआई से लगभग एक सप्ताह पहले हाथ या मशीन से बीज निकाल लें, तथा पुराने बीज बुआई हेतु उपयोग में न लें, क्योंकि इनमें अंकुरण क्षमता कम हो जाती है जिससे पर्याप्त पौध संख्या नहीं मिल पाती, तथा टूटे हुए, अपरिपक्व और संक्रमित बीज बुआई हेतु काम में न लें। बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करना चाहिए। जैसे बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए हमें मेनकोजेब या कार्बंडाजिम 2-3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें, तथा मृदा को 10 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा वीडी से उपचारित करना चाहिए, तथा प्रारंभिक अवस्था में बीजों को कीटों के नुकसान से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफास 125 लीटर किलोग्राम प्रति बीज से उपचारित करके बोना चाहिए, तथा हमें राइजोबियम कल्चर एवं फास्फोरस युक्त बायोफर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसके बुआई की बात करें तो वर्षा प्रारंभ होने पर जून के मध्य से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोनी करना चाहिए, तथा मूंगफली की फसल सामान्यतः समतल क्यारियों में बोई जाती है, परंतु अच्छी फसल के लिए निम्न उन्नत विधियों से फसल उगाना लाभप्रद होता है। जैसे कि हम इसमें बुआई की विधियों की बात करें तो आड़ी तिरछी विधि, चौड़ी क्यारी या नाली विधि, मेड़ या नाली विधि। अगर हम बात करें कि प्रति हेक्टेयर मूंगफली का कितना बीज लगता है, हमें पौधों से पौधों की दूरी और रो से रो की दूरी कितनी रखनी चाहिए, हमें जो झुमके वाली किस्म होती है सामान्य रूप से 100 से 110 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, जबकि फैलने वाली किस्मों में

में 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है, जिसमें जो झुमके वाली किस्में होती है हमें 30 सेंटीमीटर तक दूरी रख सकते हैं तथा फैलने वाली में हमें 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन्नत किस्में, हमें ऐसी कौन सी किस्में उगाए जिसमें हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले, जैसे JL24, JGN3, JGN23, ज्योति, गंगापुरी, GG20, AK-169, कादरी लपाक्षी। यह सभी उन्नत किस्में मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी उत्पादकता देती है। अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो हमें लगभग 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलो के लगभग यूरिया तथा 35 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। खाद की मात्रा आगे पीछे हो सकती है क्योंकि यह पोषक तत्वों, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके साथ कैल्शियम एवं सल्फर की कमी को भी दूर

किलो के लगभग यूरिया तथा 35 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। खाद की मात्रा आगे पीछे हो सकती है क्योंकि यह पोषक तत्वों मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके साथ कैल्शियम एवं सल्फर की कमी को भी दूर करना चाहिए क्योंकि यह तेल वाली फसल है तो इसमें सल्फर और कैल्शियम का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। अगर हम निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसमें खरपतवारों से, क्योंकि खरीफ का फसल है तो इसमें खरपतवार प्रबंधन बहुत जरूरी है, तो इसमें मुख्य रूप से कुछ खरपतवार है जो हमारे फसल के साथ उगाते हैं, जैसे मोथा, दूब घास, लकासा, हिरनखुरी, बंचरी, हजारदाना, गोखरू, सत्यानाशी, कृष्ण नील, तीन पत्तियां, कोकोआ, सफेद मुर्गा एवं कास। अब इनके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि शुरुआती अवस्था में यदि है तो बुआई से जस्ट एक दिन के अंदर में हमें पेंडीमेथिलीन जैसे खरपतवार नाशी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना चाहिए, तथा अगर हमें पेंडीमेथिलीन नहीं है तो हम ऑक्सीफ्लोरोफेन का भी यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो घास वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तथा मूंगफली की फसल बोने के बाद यदि हमारे पास टाइम है तो 15 से 20 दिन, 25 से 30 दिन एवं 40 से 45 दिन की अवस्था में डोरा या कोल्पा चलावे जिसे समय समय पर नींदा नियंत्रण किया जा सके। अगर हम बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो सामान्यतः जो मूंगफली होती है इसको 450 से 650 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मूंगफली की फसल फूलों के आने, सुइयों के बनने, फलियों के बनने एवं उनके विकास अवस्था और परिपक्व होने की अवस्था तक मृदा में नमी के प्रति संवेदनशील होती है। अच्छी उपज और कुशल जल उपयोग के लिए मूंगफली में नमी संवेदनशील अवस्थाओं पर मृदा जल क्षमता की 25% तथा अन्य अवस्थाओं पर 50% कमी होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि सिंचाई जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो एक सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद तथा दो सिंचाई 15 दिनों के अंतराल में 45 से 75 दिनों के मध्य करके हमें अच्छे से उपज होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। बलुई और दोमट मिट्टी में कम अंतराल पर किंतु प्रति सिंचाई पानी की कम मात्रा उपयोग करने से फली की उपज बढ़ती है। मूंगफली की फसल में सामान्यतः बाड़ पद्धति से सिंचाई की जाती है, परंतु नाली विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत की जा सकती है तथा उपज में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। अगर हम बात करें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की तो इसे अपनाने से सिंचाई जल की बचत एवं उपज में बढ़ोतरी होती है, जैसे बूंद बूंद पद्धति। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्व भी दिए जा सकते हैं जिससे पोषक तत्वों की क्षमता एवं उपज दोनों में वृद्धि होगी। बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में मूंगफली उत्पादन के लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति बहुत उपयोगी रहती है। अब हम बात करते हैं पादप रोग प्रबंधन की, तो इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है हमारा व्हाइट ग्रब। यह कीड़ा क्या होता है, मिट्टी में मौजूद होता है, तो हमें मई जून के महीने में खेत को 2 बार जुताई कर लेनी चाहिए। अगेती बुआई 10 से 20 जून के बीच करना चाहिए। मिट्टी में फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालना चाहिए। बीज को फफूंद नाशक उपचार से पहले क्लोरोपाइरीफास 12.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचार कर छाया में सुखाकर बोनी करनी चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी में मौजूद व्हाइट ग्रब है जिसे बोडोला कीट भी कहते हैं, यह इसका आक्रमण सीड पे नहीं। अब हम बात करते हैं पादप रोग प्रबंधन की, तो इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगते हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है हमारा व्हाइट ग्रब। यह कीड़ा क्या होता है, मिट्टी में मौजूद होता है, तो हमें मई जून के महीने में खेत को 2 बार जुताई कर लेनी चाहिए। अगेती बुआई 10 से 20 जून के बीच करना चाहिए। मिट्टी में फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालना चाहिए। बीज को फफूंद नाशक उपचार से पहले क्लोरोपाइरीफास 12.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचार कर छाया में सुखाकर बोनी करनी चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी में मौजूद व्हाइट ग्रब है जिसे बोडोला कीट भी कहते हैं, यह इसका आक्रमण सीड पे नहीं हो पाए। दूसरे कीट की बात करें माहो, सिरा या रोजेट अवस्था, इनके नियंत्रण के लिए हमें मोनोक्रोटोफास 36 cc का घोल बनाकर जिसमें उसकी मात्रा

0: होगी 220 मिलीलीटर प्रति एकड़ या डाइमेथोएट 30 ईसी का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उपयोग करें। सुरंग एवं सुरंग कीट लार्वा के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी 400 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफास 36 SL 240 मिलीलीटर प्रति एकड़ से की दर से छिड़काव करें, तथा हमें यह भी ध्यान में रखना है कि चूहा एवं गिलहरी भी मूंगफली को नुकसान पहुंचाते हैं, अतः इनके नियंत्रण पर भी ध्यान देनी चाहिए। अगर हम रोग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मूंगफली में रोग नुकसान पहुंचाता है वो होता है हमारा टिक्का, जिसे पर्ण धब्बा रोग भी कहते हैं। यह बोने के 4 से 5 सप्ताह से प्रारंभ कर 2 से 3 सप्ताह के अंदर से 2-3 बार कार्बंडाजिम 0.05% या डाइथेन M45 का 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। कॉलर सड़ना या शुष्क जड़ सड़न रोग के नियंत्रण हेतु बीज को 5 ग्राम थायरम अथवा 3 ग्राम डाइथेन M45 1 ग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगर हम फसल की कटाई एवं उपज की बात करें तो जैसे ही फसल पीड़ी पड़ने लगे, प्रति पौधा 70 से 80% फलियां पक जाए, उस समय पौधों को उखाड़ लेना चाहिए। फलियों को धूप में इतना सुखाए ताकि उसमें 8 से 10% नमी रह जाए, तभी बोरों में भरकर भंडारित करने के लिए नमी रहित स्थान पर करें। यदि भीगी मूंगफली या भंडारण किया जाए तो फलियों काले रंग की हो जाएगी। बोरियों में रखने के बाद उन पर मेलाथियन दवा का छिड़काव करें। मूंगफली की परिपक्वता का अंदाज पत्तियों के पीले पड़ने, पत्तियों पर धब्बे बनने, पुरानी पत्तियों के गिरने, छिलके के अंदर का भाग काला पड़ना और बीज के छिलके, टेस्टा का रंग पूरी तरह से विकसित होना आदि से लगाया जा सकता है। जल्दी या देरी से कटाई बीज की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है तथा कटाई के समय फली को नुकसान पहुंचाती है। फलियों को तुड़ाई के बाद छाया में तब तक सुखाना चाहिए जब तक फलियों में नमी 7 से 8% तक रह जाए, क्योंकि ज़्यादा नमी होगी तो क्या होगा कि मूंगफली का जो बीज है वो खराब हो जाएगा। मूंगफली की उपज मौसम के आधार पर अलग अलग पाई जाती है, तथा खरीफ की फसल में उपज लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो किसान भाइयों, हमें इसकी खेती करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमें बीज को उपचार करके बोना चाहिए, समय पे बुआई करनी चाहिए, फसलों में जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति और पौधों से पौधों की दूरी को बराबर मेंटेन करके बुआई करनी चाहिए, तथा अच्छी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, खाद एवं उर्वरक की मात्रा संतुलन मात्रा में यूज करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए जिससे कि फसल का नुकसान कम हो सके। किसान भाइयों नमस्कार, जय जवान जय किसान जय मध्य प्रदेश।
1: तो भैया जय तो हते उमेश पटलेजू जो न पनखो जानकारी दे रहे थे के मूंगफली फसल उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी। और अब हम अपने पंचभैयन को सुनवा रहे हैं एक लोकगीत राम कुमार प्रजापति और साथिन की आवाज में।

तो भैया अबे अपन सुन रहे थे राम कुमार प्रजापति और साथियों की आवाज में जो लोकगीत, और अपन अब बात करें आज की सीख की। तो आज की सीख में भैया अपनो जो विषय है वो है जी की बात में फर्क, ऊ के बाप में फर्क। अब भैया कन लगत के अपन को अपनी बात को पक्को भाव चाहिए के जैसे अपन ने कोई से कोनो बतकाव कर दो या कोनो वादो कर दो तो वो वादे को अपन निभाएं। ऐसो नहीं कि अपन ने मौका देखो या समय देखो और अपन अपनी बात से पलट जाएं, तो बाद में भैया आदमी पीठ पीछे काकन लगत, अरे बोले भैया जे बे आए के लगत है के जी एक बाप के नोई है ना। तो जो अपन को ऐसो सुनवे ना मिले है ना, कैसे के देखो कन लगत के जोन आदमी बात को धनी रहा थे उई को समाज में सम्मान होते और उई की इज्जत होते। तो हमें यदि समाज में सम्मान और इज्जत चाहने हैं तो हम अपनी बात के पक्के रहें और अपनी बात पे अडिक रहें, चाहे भैया समय और परिस्थिति कोनो काय ना हो। कैसे यदि हम अपनी बात के पक्के हुई हैं तभी हम समाज में अपनो स्थान बनाते हैं है ना। तो देखो भैया जा तो हती आज की सीख, और अब हो रही है चलवे की बीरा। तो चलवे के पहला हम अपने पंच भैया को बता दें काल के कार्यक्रम। काल अपने पंच भैया सुने कार्यक्रम हेलो लोकरंजन, जो कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स पे आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम है। इमें भैया जो प्रस्तुति है बाहुई है अपने रविन्द्र कुमार प्रजापति भैया की। ई के अलावा आज की सीख में जड़ों में मठा भरत, अपनी तो अपनी चर्चा हुई है, बतकाव हुई है, मनोरंजन हुई है। और भैया अब घड़ी कह रही है कि अब चलवे के पहला अनुमति लई जाए पंचन से, तो अपने छुट्टन भैया को आज की ग्राम सभा समाप्त करवे की अनुमति दो। पंचो राम राम।

ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसारण थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद सोनू जी।
2: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
3: सोनू जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फेसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक के बाद।
2: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषाम ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
4: Guided by the vision of our Prime Minister and the BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation

0: cooperation and sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future-ready, technologically advanced, environmentally sustainable, and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया. सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
2: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल. छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है. एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं. और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी. तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है. और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है. चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का. तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है. साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है, अप जाती है, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली. तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है. स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी. और सबसे बड़ी बात होती है, खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, तो स्टोरेज की, कभी सन चला गया, विंड चली गई, उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है. और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी. तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है, लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है. ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं. अब इसमें एक और चीज आएगी, वो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है. उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए. तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही, बट जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है.
1: जी, सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
2: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनी जी हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की. जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते. तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म. ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है. लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है. ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है. एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की
1: जी।
2: उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए एक सेपरेट एक संस्था

0: कंपनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
0: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं का। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे अपने का उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं का। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना, इसको यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब CNG पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस इस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 GW थी, उससे बढ़कर आज वो 154 GW से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 GW से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे DPI किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है DPI, जो हमारा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं, ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप की अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो, ये

0: एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद समझिए।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम लीजिए सुनिए फिल्म काला पानी से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत मजरू का है, संगीत दिया है SD बर्मन ने।
5: ओ चुपने वाले अब तेरी

कार्यक्रम में जब सुनिए हाउस नंबर 44 से ये गीत। गीत लिखा है साहिर ने, धुन तैयार की है एसडी बर्मन ने और आवाज दी है हेमंत कुमार ने। तो लीजिए सुनिए फिल्म हाउस नंबर 44 से ये गीत।

कार्यक्रम में जब सुनिए शैलेंद्र का लिखा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम है रंगोली

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं असद भोपाली का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

जी सुनिए फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म शराबी से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत अनजान का है, धुन तैयार की थी प्रकाश मेहरा ने।

और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति

0: डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में

0: मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. सेंटर

0: Current Affairs. This is Akashvani in the weekly program Current Affairs.
1: मिडन वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का

छतरपुर केंद्र है। रात के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म सरस्वती चंद्र से ये गीत मुकेश की आवाज में। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मजरू का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है शागिर्द।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीव से ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने और धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए साहिल लुधियानवी का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है आंखें।

कार्यक्रम में जब सुनिए फिल्म हमराज से ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत साहिल लुधियानवी का है, धुन तैयार की है रवि ने।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत। संगीत जगजीत सिंह का है, फिल्म का नाम है अर्थ।

और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है नाटक पत्थर दिल।

0: ए चाय वाले, चाय।
1: रुकिए, मैं बुला देता हूँ। अरे ओ चाय, जरा दो कप चाय देना।
0: अरे प्लीज डोंट वरी, मैं इधर खिड़की से ले लेती हूँ।
1: ऐसी भी क्या बात है, ये लीजिए चाय।
0: शुक्रिया।
1: दरअसल काफी देर से सोच रहा था कि आपसे मैगजीन लेकर पढ़ूं, पर चूंकि आप कतई मुखातिब न थी, इस वजह से कुछ कह न सका। बाय द वे, आप कहाँ जा रही हैं?
0: क्यों?
1: यूं ही, अगर आप बुरा न माने तो हम आपस में बातें कर सकते हैं, ताकि ये रास्ते की बोरियत दूर हो सके और हम अजनबी भी न रहेंगे।
0: ये लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए।
1: यानी आप बात नहीं करेंगी?

0: कुली, ए कुली।
1: अरे आपको भी यहीं उतरना है? लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ।
2: मेहरबानी से आप तकलीफ न कीजिए, मैं कुली ले लूंगी।
1: जैसी आपकी मर्जी। अजीब लड़की है।
2: अजीब लड़का है।
3: मीरा, वो एनुअल फंक्शन की तैयारी में तुम भी हो क्या?
0: हाँ हूँ तो, और तुम भी चलना देखने के लिए।
4: अरे और उसका वो, उसमें आप क्या वो उसमें कर रही है, कौन सा भाग ले रही है?
0: नाटक का सोच रही हूँ।
3: हाँ, नहीं मैडम ही बोल रही थी कि नाटक कर लेना। हाँ। एक और
0: कोई अच्छी सी लड़की उसमें पार्ट के लिए मिल जाए।
3: ठीक है चलो देखते हैं हॉस्टल।
0: अरे निखात, हेलो
3: हेलो हेलो हेलो निखात, हेलो अम्मा, तुम क्या आएंगी, बाहर आ गई। जरा पूछो तो जीवा से कितना सूना लगता था हॉस्टल।
0: हाँ,
3: कहाँ कैसी बीती छुट्टियाँ?
0: अच्छी मजे की। अरे कहाँ कहाँ घूमी, कौन कौन सी मूवी देखी है?
3: अरे सुरेखा उससे जरा बैठने को भी तो कहो।
0: निखात यार, कुछ शादी वादी करके नहीं आई तू? हम सब तो यही कहती थी कि इतने दिनों की छुट्टी में तू जरूर कुछ करके आएगी।
4: जल्दी भी क्या है, हो जाएगी।
0: हाँ
4: कल कॉलेज तो मॉर्निंग का ही है ना।
0: हाँ, हाँ।

0: Hello, Mr. Javed.
1: Good morning, sir.
0: Very good morning. How are you?
1: Fine, sir. Thank you.
0: कहो छुट्टियां कैसी बीती? तुम्हारे कॉलेज तुम्हें बहुत याद करते थे.
1: Why not, sir? अच्छा सर, चलूं?
0: Okay.
1: हमारे यार साढ़े बारह बज रहे हैं, चलो चाय पीकर आते हैं.
0: हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए.
1: यार अरुण, कल ट्रेन में एक लड़की मिली थी.
0: अच्छा.
1: और वो यहीं स्टेशन पर भी उतरी. अरे अरे, बिल्कुल यही तो थी. हाँ, यही, बिल्कुल एग्जैक्टली यही. मैं अभी आया. आदाब.
2: आदाब.
1: कहिए, आपने मुझे पहचाना?
2: जी, आपको?
1: अरे, आप मुझे पहचान रही हैं इस रास्ते को?
2: लगता है कहीं देखा है आपको.
1: लीजिए, अभी कल ही ट्रेन में मुलाकात हुई और आप फरमाती हैं कि कहीं देखा है. चलिए, आज के बाद तो आप नहीं कहेंगी ना. हाँ, तो क्या आप इसी कॉलेज में हैं?
2: जी हाँ. अच्छा, मैं चलती हूँ.
1: खुदा हाफिज.
2: खुदा हाफिज.
3: अमा यार, कौन सा मैदान मार कर आ रहा है तू?
1: अरे यार, ऐसी अपनी तकदीर कहाँ. मगर यार, अजीब चीज है, देखो तो बस देखते रहने को जी चाहता है.
3: अच्छा, चलो भी, वरना वहाँ बॉस देखेंगे ना, तो बस देखते रह जाओगे. चलो.

0: आप?
1: जी हाँ, मैं।
0: आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रहती हूँ?
1: अरे जनाब, ढूंढने पर तो खुदा भी मिल जाता है। कहिए, बैठने को नहीं कहेंगी?
0: बैठिए ना।
1: शुक्रिया।
0: कोई बात नहीं, कहिए, आपको कोई जरूरी काम है क्या?
1: जी हाँ, बहुत जरूरी। न जाने क्यों उस दिन आपके साथ ट्रेन का सफर, आपका भी इसी शहर में उतरना, फिर मेरा ऑफिस और आपका कॉलेज इसी शहर में होना, कोई गैर मामूली बात तो नहीं?
0: महज इत्तेफाक और कुछ भी नहीं।
1: मैं आपसे चंद बातें करने का ख्वाहिशमंद हूं, क्या आप थोड़ा सा वक्त देंगे मुझे?
0: मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस मुलाकात को इतना तफसील देने पर क्यों तुले हुए हैं।
1: और मेरी समझ में नहीं आता कि आप इखलाकन मेरी बात को इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रही हैं।
0: इखलाकन नहीं, आदतन।
1: आदत तो बदली जा सकती है।
0: और कोई ना बदलना चाहे
1: तो हम गुजारिश करेंगे। आखिर आप इतना झिझकती क्यों हैं? आप सर्विस करती हैं, दूसरे शहर में अकेले रह रही हैं, शुड बी स्मार्ट। मैं इधर कितने दिनों से बराबर देख रहा हूं कि आप कॉलेज के अलावा इधर कहीं निकली ही नहीं। क्या आपका इस अकेले कमरे में दम नहीं घुटता?
0: माफ कीजिएगा, आप कहना क्या चाहते हैं?
1: यही कि आप बोलना चाहकर भी होंठों को सिलना चाहती हैं, बेसाख्ता आती हुई हंसी को जबरदस्ती रोकने की नाकाम कोशिश करती हैं, रूबरू बात करने की जगह नजरें चुराती हैं। ऐसा क्यों? क्या मैं सादगी इस बंदिश का राज पूछ सकता हूं?
0: जावेद साहब, जिंदगी के तवैल एहसासात का हमारी इस मुख्तसर सी मुलाकात से ताल्लुक ही क्या है? आखिर आप ये सब कुछ पूछना ही क्यों चाहते हैं?
1: मैं आपकी पलकों में छुपी खुशी आपकी आंखों में देखना चाहता हूं।
0: हाय अल्लाह,
1: इनायत होगी अगर आप मुझसे इसकी वजह न पूछें।
0: ना ही मैं वजह पूछ रही हूं, ना ही सादगी का राज बताने जा रही हूं। आप मुझे नाहक परेशान कर रहे हैं।
1: निखत जी, नहीं मालूम ये बेलोस सी कशिश मुझे यहां तक कैसे खींच लाई। आपकी नजरों से गिरने से बेहतर है खामोश हो जाना। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: ठहरिए, मैं चाय बनाती हूं।
1: चलता हूं एक अर्ज के साथ कि फिर कभी दिल न माना तो क्या आ सकूंगा। इस खामोशी से जाहिर है कि मेरा आना आपको
0: आ जाइएगा।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है मेरे खुदा। जावेद साहब के जज्बातों में छुपे हुए एहसासात, क्या इन्हें मोहब्बत के सिवा कोई और नाम दिया जा सकता है? जिंदगी की ये रह गुजर, हाँ मेरे खुदा, मेरे लिए बदनसीबी के सिवा कुछ भी नहीं। वही जख्म फिर उभर रहा है जिसकी दवा ना मेरे पास है, ना ही मैं इलाज करना चाहती हूँ।
2: बीबी जी, खाना लगाऊं?
0: नहीं राधा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, खाना नहीं खा सकूंगी।
2: तो दूध ही पी लीजिए।
0: तुम पी लो राधा, रोज तो मैं पीती हूं ना। अब मैं सोऊंगी, नींद आएगी क्या?

0: आदाब।
1: कहिए कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ।
1: आइए आज थोड़ा कंपनी गार्डन तक चलते हैं। आपको भी कुछ चेंज हो?
0: मैं कंपनी गार्डन? मैं अकेले कभी नहीं गई।
1: अरे मैं तो हूँ, चलिए चलते हैं।

0: निखत जी, जाहिर है कि आप अपने दिल में मेरी जात के लिए तमाम तरह के शुभहात करती होंगी, पर खुदा गवाह है कि मैं अपने दिल के तूफानों से बुरी तरह लड़ चुका हूं और थक हार कर आपसे अपनी जिंदगी मांगना चाहता हूं। हालांकि मेरे ये ख्यालात किसी भी शरीफ लड़की को भले महसूस नहीं होंगे, जबकि वो उस शख्स के बारे में कुछ जानती भी ना हो।
1: जावेद साहब, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं?
0: आप खुद में एक पूरी दास्तान हैं। आपकी आंखों में देखकर अपनी नीयत पर शक होने लगता है मुझे। मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुका हूं। निखत, मेरी जिंदगी तल्ख होती जा रही है। सोते जागते सिर्फ एक ही ख्याल, एक ही ख्वाहिश सांस की तरह मेरे साथ है, और वो ये कि मैं उस इत्तेफाक को हकीकत में बदल सकूं जिसे आप बेबुनियाद कहती हैं। क्या आपको कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या मोहब्बत की ये तड़प एक तरफ ही है, दूसरी ओर कुछ?
1: खामोश खामोश हो जाइए जावेद साहब। इस नाम से मुझे चिढ़ है, दुश्मनी है। इंसान की बर्बादी का नाम ही शायद मोहब्बत है।
0: लगता है आपके सीने में दिल नहीं है, आप पत्थर दिल हैं, पत्थर दिल।
1: नहीं जावेद, नहीं, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, नहीं हूँ।
0: फिर क्या वजह है कि आप कुदरत के इस एहसास को करीब से देखना भी नहीं चाहती? आपकी लबों की थरथराहट जो कुछ कह रही है, आप उसे जुबान से कहना नहीं चाहती? आखिर क्या वजह है?
1: जावेद साहब, आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान परवेज से मुलाकात हुई थी। जब तब मेरा पीछा करने वाले परवेज हर दिन अपनी कार चौराहे पर तब तक खड़ी रखते जब तक मैं गुजर ना जाती। उनकी हरकतों के बेबुनियाद किस्से जब फजा में गूंजने लगे तो तंग आकर एक दिन मैंने उन्हें लैब में टोका। मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं।
2: निकाह जी, आप? या खुदा, ये क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं?
1: मिस्टर परवेज, किसी ख्वाब की ताबीर नहीं, मैं खुद हूं और आपसे पूछने आई हूं कि आप आखिर क्यों पड़े हैं मेरे पीछे। आपको दौलत के जाल में फंसने के लिए हजारों लड़कियां मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी में। खुदा के वास्ते आइंदा से मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं उन अफसानों की दास्तान नहीं बनना चाहती जो झूठ, फरेब और मनगढ़ंत हूं।
2: निकाह जी, मैं आपकी नजरों में इतना गिरा हुआ ही सही, लेकिन जब आप सच्चाई की दहलीज पर कदम रखेंगी तो यकीनन आपको नजरों से यह पर्दा हटाना होगा। इधर देखिए, मेरी अलमारी में भरे हुए खत जो हर दिन हर रात मैंने आपके नाम लिखे कि किसी तरह आपसे मिल सकूं, आपसे बात कर सकूं और अपने प्यार को बदनाम होने से बचा सकूं।
1: क्या प्यार? आप मुझे प्यार करते हैं? परवेज साहब, कहां आप और कहां मैं। आपके पैर जमीन को नहीं छुपाते और मैं जमीन पर ही रहती हूं। परवेज साहब, मुझे प्यार न कीजिए।
2: निकाह जी, ऐसा ना कहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि आपने ये कैसा जादू कर दिया है मुझ पर।
1: आई एम सॉरी मिस्टर परवेज।
2: नो, नो एक्सक्यूज निखत, नो।
1: उस दिन के बाद परवेज मेरे दामन से और उलझ गए। मोहब्बत और इकरार के पहले कदम की जानिब उनके कदमों की आहटें बढ़ती गईं। जज्बे इश्क दिलों की मासूम करवटों के बीच नगमा छेड़ने लगा। हसरतों और आरजुओं के महल तामीर होने लगे। अक्सर ही हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बीच एक दूसरे के हाथों की तकदीरें पढ़ने लगे।
3: आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और आपको कोई बहुत प्यार करता है।
2: अच्छा जी, लाइए हम आपका हाथ देखें। दीजिए भी।
3: ऐसे नहीं, हाथ पकड़ने से

0: पहले पहले
1: घोड़ी चढ़कर आना होगा।
0: अच्छा, आपने कहा था ना कि आप दैदी से बात करेंगे, तो क्या हुआ?
1: अम्मा यार, इन खूबसूरत लम्हों में डैडी का जिक्र कहाँ से ले बैठी। उन्हें अपने लंबे चौड़े कारोबार से फुर्सत मिले तब ना बात करूं। इधर अपनी पढ़ाई पूरी हुई, उधर डैडी से हाँ करवा ली। आखिर इकलौता चहेता बेटा हूँ, जिसे चाहूंगा उसे उस महल की रानी बना दूंगा।
0: हसीन ख्वाबों के पर लगाकर मैं दूर आसमां की बुलंदियों को छूने लगी। रगों में बहता हुआ हर कतरा मोहब्बत के रंग से गुलार हो चुका था। परवेज मेरा साया बन चुके थे, फिर भी समाज रिवाज की बंदिशों से घिरी हुई मैं दोनों खानदानों की रजामंदी जान लेने की ख्वाहिशमंद थी। तभी इम्तिहान खत्म होने के कुछ ही दिन पहले एक सैलाब आया, और मेरी मोहब्बत तिनका तिनका बिखर गई, बिखर गई।

0: एक बात बताऊं, कल मैंने चुपचाप अम्मी से सारी बातें बता दी और अपनी मर्जी भी। अम्मी ने कहा कि परवेज के डैडी इस बारे में कोई खत ही भेज दें या आकर रिश्ता पक्का कर लें, नहीं तो मेरी अम्मी खुद तुम्हारे घर जाएंगे मेरा रिश्ता लेकर।
1: निकात, मैंने डैडी से बात की थी।
0: तो क्या कहा उन्होंने?
1: उन्होंने कहा
0: हाँ कि वो मुझे अपनी बहू
1: नहीं निकात।
0: ओफो, मजाक नहीं करो परवेज, जरा देखो तो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है।
1: निकात, मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। डैडी मेरी शादी अपने पार्टनर की बेटी से तय कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करने की जबरदस्ती करता हूँ तो पहले तो वो ऐसा होने ही नहीं देंगे, और अगर मैंने जिद की तो मुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे।
0: परवेज, ये तुम क्या कह रहे हो? परवेज, लाओ जहर दे दो मुझे, जहर दे दो कि वो भी नहीं दे सकते। या खुदारा, चलो हट जाओ मेरी निगाहों से, चले जाओ यहां से, इंसानियत से गिरे हुए तुम और तुम्हारा बाप, दौलत के भिखारी, मोहब्बत को सिक्कों में तौलने वाले तुम इंसान कहां हो? परवेज, तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, तुमने मेरी पाक अस्पत पर अपनी बेपाक मोहब्बत का जो जाल बिछाया था उसे नोच डालो, आजाद कर दो मुझे।
1: निकात, सुनो निकात।
0: खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, क्या सोचा था तुमने कि गरीब के पास इज्जत नहीं होती, कोई मर्तबा नहीं होता? दौलत के पास तो सिर्फ हैवानियत है। याद रखो, पैसे से सब कुछ जीता जा सकता है लेकिन दिल नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पर तुम्हारी बद नजर से बच गई। जाओ जाओ, तुम्हारी कार, तुम्हारा बंगला तुम्हें मुबारक रहे, मुबारक रहे, मुबारक रहे।

0: जावेद साहब, इस हादसे को गुजरे हुए 3 साल हो गए, लेकिन ये जख्म आज भी उतना ही ताजा है। मैं इसे भरना नहीं चाहती। ये दर्द मुझे जिंदगी के रास्तों पर तन्हा चलने में सहारा देता है, कदम कदम पर इंसान को पहचानने की तमीज देता है।
1: निखत, जिंदगी का असली रूप यही है। गुलाब कांटों के बीच ही खिला करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच ना तो दौलत है, ना ही अमीर और गरीब की दीवार।

0: आपकी शराफत, इंसानियत और किरदार का परस्तार हूं, मुझे परवेज का नाम न दें। इस डूबती शाम में उभरते हुए चांद को गवाह बनाकर कसम देता हूं कि आपको जिंदगी के इन भीगे हुए लम्हों से अब कभी न गुजरने दूंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। आइए चलें, बहुत रात हो गई।
1: राधा, जरा मेरा कलम देना।
2: बीबी जी, काफी रात हो गई है, अब सो जाइए ना।
1: नहीं राधा, एक फैसला लिखना है। मेरी जाने से पहले इसे जावेद तक पहुंचाना है तुम्हें।

0: साहब, बीवी जी ने पर्चा दिया है, वो अभी अभी स्टेशन गई है।
1: जावेद साहब, आदाब। बहुत कुछ सोचने के बाद फिर उसी मकाम पर खड़ी हूं। मेरे उसूल के तहत मोहब्बत के जज्बात बस एक ही बार परवान चढ़ते हैं, और मैं उस परवाज में अपने पंख जला चुकी हूं। आपने सही पहचाना था, मैं पत्थर दिल हूं, या कि एक पत्थर है मेरे दिल पर, कह नहीं सकती। लेकिन लेकिन मैं उस पत्थर को नहीं हटाना चाहती जिसके नीचे मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात आज भी जिंदा हैं। अब बस जीना चाहती हूं कुछ यादों के सहारे। मैं आपके जज्बातों की कद्र करती हूं, लेकिन मजबूर हूं, उन्हें असली जामा नहीं पहना सकती। आखिरकार मुझे आपसे दूर जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं यहां से जा रही हूं, सुबह मैं चली जाऊंगी। अलविदा, अलविदा।

अभी आपने सुना ये नाटक पत्थर दिल, मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे बुंदेली सुगंध में बुंदेली काव्य पाठ रामलाल द्विवेदी से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन कार्यक्रम। 9:00 आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे रामचरण पटेल। इनके साथ ढोलों पर संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर होंगे जब्बार खान और झीका पर होंगे बाबू रखवार। 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे। 10:05 पर आप सुनेंगे सबरंग के अंतर्गत मिश्रित संगीत। 10:30 पर सुनना न भूलिएगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा और यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम बच्चों के लिए जरूरी टीकाकरण, प्रायोजक होंगे डॉक्टर RS त्रिपाठी। 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, कलाकार होंगे राम प्रसाद कुशवाहा। इनके साथ ढोलक पर संगत करेंगे मुकेश रजक, बैंजो पर होंगे जब्बार खान और झीका पर होंगे बाबू रखवार। शाम 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई कल सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हैलो लोकरंजन, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही आज की सीख का विषय होगा जड़ों में मठा भरत। 8:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रैली किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में।

आज बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित किया जाएगा संगीत का खेल भारती कार्यक्रम। ये थे कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समूह सौर में लीजिए सुनिए ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में ये देशगान। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित रविशंकर से उनका सितार वादन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं ये सितार पर बजाया ये राग कामेश्वरी।

अभी आपने सुना पंडित रविशंकर से सितार पर बजाया राग कामेश्वरी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं पंडित रविशंकर से सितार पर बजाया ये गंगेश्वरी।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार थे पंडित रविशंकर। इनसे आज हमने सुना सितार पर बजाया राग कामेश्वरी और गंगेश्वरी। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी

0: वन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।